0: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: நேயர்களே, இன்று பிற்பகல் 1:10 ஒலிபரப்பாகும் நலந்தானா நிகழ்ச்சியின் விளம்பரதாரர் வசந்த் அண்ட் கோ.
3: இந்தியாவின் நம்பர் 1 டீலர் வசந்த் அண்ட் கோ.
4: ஆனந்த் பூங்காற்று நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக நம்ம கிட்ட பேச போற நேயர் யாரு, எங்கிருந்து பேசலாம் கேட்கலாம். வணக்கம்.
5: வணக்கம்ப்பா, நான் பரமக்குடியில இருந்து ராஜேஸ்வரி பேசுறேங்கப்பா.
4: வணக்கம், சொல்லுங்க.
5: அதாவது வெளிப்பட

0: செபி மூலம் இன்வெஸ்டர் விழிப்புணர்வு முயற்சி. மேலும் விவரங்களுக்கு செபி இன்வெஸ்டர் வெப்சைட்டை பார்க்கவும் அல்லது செபி சார்த்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் பண்பலை 102.6.

0: 2331 4 0464 and 2371 7117. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप बेहिचक होकर डायल कीजिए इन नंबरों पर. ये नंबर्स हैं 2331 4444, 2331 0464 और 2371 7117. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े मुद्दों पर गहरी समझ रखने वाले बाजार विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार प्राची, नमस्कार अनुभव और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. Indian stock markets snap their 8-week losing streak. Sensex and Nifty gains around 0.5%. Wall Street wraps up week with notable gains. And global crude oil prices rise during the week.
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगातार 8 हफ्तों की गिरावट के बाद इस सप्ताह वृद्धि दर्ज की गई. सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 0.5% का उछाल आया. वॉल स्ट्रीट इस सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुआ और इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े.

0: Listeners, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Shrotao, hamare saath hamare pehle caller jud chuke hain. Ye Rajasthan se hain. Inka naam hai Rajesh. राजेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: नमस्ते. नमस्ते मैडम. ये मेरा सवाल ये था मैडम कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंपनियां है जो ज्यादा चलन आ रहा है मैडम इलेक्ट्रिक व्हीकल का कारों का, तो आने वाले भविष्य में 5 साल का अगर अनुमान लेकर चले तो इनका भविष्य किस प्रकार का रहेगा आने वाले 5 साल के लिए?
3: चलिए राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य बहुत उज्जवल है. जिस प्रकार से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही है और एनर्जी सुरक्षा को लेके दुनिया भर में बात की जा रही है
1: जी,
3: तो उसमें मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल आप देखें तो हर साल बढ़ रही है. जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो भी उसमें निवेश अपना बढ़ा रही है. और इसका जो बुनियादी ढांचा है जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसमें जिस प्रकार से लिथियम बैटरीज में डेवलपमेंट हो रहा है उसकी रेंज भी बढ़ती जा रही है, कीमतें कम हो रही हैं और इसका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, तो जैसे जैसे ये और फैलेगा आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बढ़ती हुई दिखाई देंगी. और अभी जो लोगों को समस्याएं आती है प्राची अनुभा इसमें, वो ये आती है कि हम दूर गाड़ी अगर ले जाना चाहें तो भाई वहां पर हमको चार्जिंग का मिलेगा. तो अब तो गाड़ी मुझे लगता है 400-500 किलोमीटर वाली गाड़ी आम हो गई है. और अब तो मैंने एक पढ़ रहा था कहीं पर 1100 किलोमीटर की भी गाड़ी आ रही है जो 1100 किलोमीटर चलती है. तो ये तो लगता है जैसे आप पेट्रोल डीजल भरवा के भूल जाते हैं तो ऐसे आप चार्ज करके भी काफी टाइम के लिए भूल सकते हैं. तो बहुत उज्जवल राजेश जी भविष्य इसका अगले आने वाले सालों में नजर आता है.
1: और शरद जी, जिज्ञासा लोगों में इस प्रकार भी है ईवी को लेकर के कि एक तो आपने डिस्टेंस की बात बताई कि लंबी अगर दूरी पर लेकर के जाते हैं तो क्या वो सस्टेन करेगा कि नहीं अनुभव, लेकिन ये भी है कि गुरुग्राम जैसे इलाके में जहां पर कई बार पानी जम जाता है वहां पर किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम मतलब कर पाएंगे आवागमन?
3: देखिए, जैसे जैसे इनोवेशन होता है तो देश के अनुसार गाड़ियां बनाई जाती है. तो जो इसकी मशीनरी होती है, जो मोटर होती है, बेसिकली इसमें मोटर होती है
1: जी,
3: तो उसकी जो पोजीशनिंग है मुझे पता लगा कि कुछ कंपनियां पोजीशनिंग उसको थोड़े हायर लेवल पे कर रही हैं. पहले मोटर नीचे होती थी, तो आप वो कस्टमाइज कर सकते हैं. आप जिन इलाकों में पानी भरता है तो आप वहां पर उसकी मोटर की पोजीशनिंग आप चेंज कर सकते हैं जिससे कि पानी उसको प्रभावित ना कर सके. तो मुझे लगता है ये भी समस्या का समाधान निकल आएगा.
0: लेट्स गो ओवर टू आवर नेक्स्ट लिसनर. जय कुमार इज कॉलिंग अस फ्रॉम गाजियाबाद. जय कुमार, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: नमस्कार.
0: नमस्ते
4: मंत्रा टीम को नमस्कार और कोहली जी को विशेष नमस्कार.
3: नमस्कार जय कुमार जी, नमस्कार.
4: मेरा

0: एक सवाल है जो पिछले किसी मार्जी मंत्र में बोला गया था कि जब जब डॉलर स्ट्रांग होता है सोना कमजोर हो जाता है
1: जी,
0: तो इसका क्या लॉजिक है? और हमारी जो मार्केट है स्टॉक मार्केट निफ्टी इंडेक्स में अभी फायदेमंद होगा या आगे चल के फायदेमंद होगा?
1: अजय कुमार जी, आपका पहला सवाल डॉलर जब मजबूत होता है तो सोना क्यों कमजोर होता है, उसका कारण ये है कि डॉलर की जो दबदबा है, डॉलर का जो रुतबा है, डॉलर का जो पूरा सुप्रीमेसी है,

0: जाते हैं, वो सब डॉलर में लिए जाते हैं। तो मेजर ऑफ वैल्यू डॉलर है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू है, मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। तो जब डॉलर कमजोर होता है, इसको आप मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं, डॉलर जब कमजोर होता है तो ऐसा लगने लगता है सोने के निवेशकों को, ट्रेडर्स को, कि अब डॉलर नहीं तो क्या। तो डॉलर नहीं तो गोल्ड ही ऐसी चीज है जो कि दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है, और डॉलर जब मजबूत होता है तो फिर ऐसे में गोल्ड का थोड़ा सा चमक कम हो जाती है। आने वाले सालों में मुझे लग रहा है जिस प्रकार से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत है, 40 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का कर्ज है और बाकी चीजों को भी देखते हुए, ऐसा लग रहा है कि डॉलर की परचेजिंग पावर थोड़ी घट रही है। तो जैसे जैसे घटेगी, इसीलिए सोने का भविष्य जब उज्ज्वल बताया जाता है तो उसका एक कारण यह रहता है कि डॉलर का भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं नजर आता है। तो ये आपने दूसरा निफ्टी का पूछा,
1: निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का की भविष्य आप कैसे देखते हैं कि अभी बेटर?
0: देखिए, अभी तो बहुत चैलेंजिंग टाइम से निफ्टी और सेंसेक्स गुजर रही है। आप देखते हैं, हालांकि 8 हफ्ते का एक जो नजर लगी हुई थी वो थोड़ी सी हटी है, हल्का सा ऊपर गया है, पर अभी मुझे लग रहा है कि अमेरिकन मार्केट से हमें थोड़ा खतरा है, क्योंकि वहां पर जो एक ये डेट बबल बन रहा है, जो उधार, वो मुझे लग रहा है कि ये वापस कहीं डेट डिफॉल्ट इसमें हो गया तो एक बड़ा क्रैश अमेरिकन मार्केट्स में आ सकता है। तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहने का समय है जयकुमार जी, पर मैं समझता हूं कि लंबी अवधि का जो निवेशक है, 5 साल 10 साल का, उसके लिए मौके भी देती है मार्केट। अगर इस समय वैल्यूएशंस बहुत सारी कंपनीज की अट्रैक्टिव है तो इसलिए इसको मौके की तरह भी देखा जा सकता है, पर उसमें फिर शर्त यह है कि नजरिया लंबे वक्त का होना चाहिए।
2: बिल्कुल। इस बीच दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हेलो
2: जी, अपना सवाल पूछिए।
3: हाँ नमस्कार सभी को, कोहली सर से। सर नमस्कार। सर
0: नमस्कार। नमस्कार
3: सर, तबीयत ठीक है? आवाज में आपकी थोड़ी सी,
0: हाँ आवाज थोड़ी भारी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी।
3: हो जाएंगे सर, हो जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे रिजर्व बैंक की इस मौद्रिक नीति की घोषणा हुई है, जिसमें रिजर्व बैंक ने रेपो रेट जो है सवा क्वार्टर पॉइंट, मतलब 0.25% बेसिस पॉइंट बढ़ाया उन्होंने सर
0: जी।
3: तो इससे बैंकिंग सेक्टर में बैंकर लोन ब्याज दर महंगा हो जाएगा रिजर्व बैंक से कर्ज लेने की
0: जी।
3: तो क्या बैंक आने वाले दिनों में होम लोन, ऑटो लोन में बढ़ाएंगे, ईएमआई लोन का बढ़ सकता है सर? और एक सर टेक्निकल थोड़ा सा पूछना था सर
0: जी।
3: जो गोल्डन ब्रेकआउट होता है सर किसी भी स्टॉक में, गोल्डन ब्रेकआउट इसे, तो कैसे कब पता चलेगा सर कि ये शेयर में गोल्डन ब्रेकआउट लेवल आने वाली है या उसके आसपास अभी ट्रेड कर रही है? धन्यवाद।
0: चलिए, आपने आरबीआई एमपीसी का पूछा। जी हाँ, लोन बिल्कुल महंगे होंगे, क्योंकि जब रिपो रेट बढ़ाया जाता है अमित, तो रिपो रेट वो होता है जिस डेट पर, जिस रेट पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहा जाता है, तो वो आगे पास ऑन करते हैं कस्टमर्स को। बिल्कुल, आपकी ईएमआई, और मैं सभी श्रोताओं को ये बता दूं कि ईएमआई आजकल बढ़ाने का ट्रेंड नहीं है। आजकल क्या करते हैं, वो टेन्योर बढ़ा देते हैं, यानी कि आपने 10 साल का लोन लिया हुआ है तो 10 साल 6 महीने, 10 साल 4 महीने, 20 साल का लिया हुआ तो हो सकता है 21 साल का हो जाए। इस प्रकार की आजकल प्रचलन ज्यादा है, बजाय इसके कि आपकी ईएमआई में बदलाव किया जाए, क्योंकि पीडीसी वगैरह रखे होते हैं। वैसे भी बैंक ये दिखाते नहीं है कि अब महंगा हो गया, जब आपको पता लगता है लोन ज्यादा समय तक चल रहा है तो बिल्कुल महंगा होगा, इस तरीके से होगा या उस तरीके से होगा, बात एक ही है। गोल्डन ब्रेकआउट देखिए, पता जब लगता है, जब एक तो स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है, और हम लोग जब उसको चार्ट्स पे देखते हैं तो चार्ट्स में जो कैंडल्स हैं वो भी बताती हैं कि गोल्डन ब्रेकआउट हो रहा है। और बढ़िया इसका तरीका वैसे ओपन इंटरेस्ट देखने का है, तो अमेरिकन मार्केट्स में इसको कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स कहते हैं, हम लोग यहां पर ओपन इंटरेस्ट शब्द ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे जैसे जब देखें निवेशकों का रुझान उस तरफ हो रहा है, या कोई बड़ी खबर आने वाली है ऐसी पॉलिसी रिलेटेड उस सेक्टर के लिए, उस कंपनी के लिए, तो उससे भी पता लगता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं अमित, फिर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें अनुभव प्राची ये भी है कि हर शेयर के लिए गोल्डन ब्रेकआउट का एक ही नियम हमेशा नहीं चलता है। हम लोग किसी किसी सेक्टर में तो दूर से पहचान लेते हैं, किसी किसी में बहुत पास आने में पहचाना जाता है। तो एक जनरल रीड है, पर आप मोटा मोटा ये समझिए कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो समझिए कि
1: मार्केट की समझ होना बहुत जरूरी है इसके लिए।
0: हाँ, पर ये जो हमारे श्रोता हैं अमित,
1: इनकी समझ
0: काफी है, क्योंकि ये निरंतर टेक्निकल सवाल पूछते हैं। ये एफएनओ में भी मैंने इनको देखा है कई दफे पूछते वाला, कि मैंने इनको अलर्ट भी किया है, सावधान ना करिए जी।
2: बिल्कुल।

0: people have been facing because of the weighted average method.
1: And Sharadji, you know what Mr. Prasad was asking about the US sperm freeze, why it hasn't affected the IT sector here really. I was reading somewhere that one of the Indian IT companies actually said that actually it's very few Indian companies who have been applying for this certificate, you know, in the last few years. It's more of the US companies which have been
2: It's just 2%.
1: Yeah,
2: it's
1: so just, applying just for 2%. This for their employees.
0: In fact, our commerce minister said it might turn out to be beneficial for us.
1: Right.
0: You never know. You know, it might help in retaining the talent here in the long run.
1: Yeah. So let's take the next call coming in from Bhilai. Ravi Narayan is online with us. Mr. Narayan, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
3: Thank you, ma'am. Dr. Saab, good evening.
0: Good evening.
3: Get well soon.
0: Thank you.
3: Mera question jo hai, abhi jo market-driven jo volatility hai, usko jo hai, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों या फिर इंडिविजुअल्स हों वो कितना किस हद तक उसको ऑफसेट करते होंगे ये इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं क्या और इसके कारण से कुछ इसका कोई रोल है क्या और क्या इसका दारोमदार है ये मैं जानना चाह रहा था
0: देखिए रवि जी इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल हमें मिलता है और जो हम तो क्योंकि 24 घंटे मार्केट्स में रहते हैं किसी ने मुझे पूछा 24 घंटे कैसे रहते हैं क्योंकि हम लोग ग्लोबल मार्केट्स ट्रैक करते हैं कभी उधर कॉस्पी खुल जाता है उधर निके खुल जाता है हैंगसेंग खुल जाता है स्ट्रेट टाइम खुल जाता है शाम दिन में कैक और डैक्स खुला रहता है फिर उधर डाउ S&P खुल जाता है लगभग 24 घंटे तो हमने इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल रवि जी कैसे इसको हैंडल किया जाता है अगर आप DIIs का एक्टिविटी देखें तो जब जब FIIs बेच रहे हैं तब तब DIIs खरीद रहे हैं तो मुझे लगता है सबसे ग्लेरिंग एग्जांपल के मार्केट में एक आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाता है
1: जी।
0: तो उसका ये एग्जांपल है कि 10,000 करोड़ 9,000 करोड़ और कभी कभी तो उनके बेचने से भी ज्यादा खरीदते हैं तो वॉलेटिलिटी को हैंडल करने का तरीका यही है कि आप जो ट्रेडर्स हैं वो तो देखिए 90% लूज कर जाते हैं छोटे ट्रेडर्स खासकर पर जो निवेशक हैं वो जो लॉन्ग टर्म के लिए वो इसमें एक मौका ढूंढते हैं तो आपको वॉलेटिलिटी परेशान उनको करती है जो डे ट्रेड्स करते हैं या जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो भी कई दफे फंस जाते हैं पर अगर आप 5 साल 10 साल का नजरिया रख रहे हैं तो इसमें रवि जी इतनी वॉलेटिलिटी हमें परेशान नहीं करती है मुझे लगता है आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या तो करते होंगे या करते तो मैं आपको सलाह यही दूंगा मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बहुत लेसन सिखाया है मार्केट ने पिछले 2 साल में तो मैं उम्मीद करता हूं आपको संदेश मिल गया होगा मैं जो कहना चाह रहा था
1: जी ओके लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी US स्टॉक मार्केट्स एंडेड हायर यस्टरडे अमंग द मेजर इंडिसेस द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज क्लाइम्ड 0.8% The Nasdaq Composite as well as the S&P 500 gained around 0.6%. For the week, the S&P jumped 1.1%, Dow rose 0.9% and Nasdaq advanced 0.6%. A very quick comment from you, Sharadji, on the US markets because right now, next week, there are certain, data which is going to come in. There's going to be US inflation data which is going to come out. Then there is a retail sale price. How do you see the markets moving?
0: I think the bond yields and the dollar index, they are the driving factors. And why the markets rose on when they closed Friday, they closed in the green.
1: Mm.
0: It was because of the bond yields cooling down.
1: Yeah.
0: And there was a bond buyback done. In fact, they were disputed numbers on WAB. First, it was thought to be $39 billion. Then it was thought to be $22 billion. And finally, $6 billion of bond buyback was done against them. They received $14.9 billion of bids. So that cooled down from 5.36, it came down to 5.22. That led to the rally.
1: Right. Let's move on to oil now. Global crude oil prices rose this week. Brent crude December futures rose 2.4% to settle at $104.72 per barrel. West Texas Intermediate crude December futures gained 1.7% to end at $91.01 per barrel over the week.
4: अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के बाद अमरीका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस में बने डीजल की बिक्री और आयात पर लगी पाबंदियां अस्थायी रूप से हटा दी हैं। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रूस तुरंत 3 लाख टन से ज्यादा डीजल की सप्लाई करेगा इसके बाद नवम्बर में 5 लाख टन फिर 10 लाख टन और रूसी रिफाइनरियों की स्थिति के आधार पर अतिरिक्त 30 लाख टन डीजल की सप्लाई की जाएगी बाद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमरीका और ग्लोबल मार्केट में रूस से तेल और

0: पेट्रोलियम उत्पादों की प्रस्तावित सप्लाई का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। शरद जी, हम इस पर आपसे कमेंट लेंगे, मगर इससे पहले सेतुपति जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेन्नई से। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम, माय नेम इज सेतुपति फ्रॉम चेन्नई। आई हैव टू क्विक क्वेश्चंस सर, रिगार्डिंग द स्टारलिंक फ्रॉम द मिस्टर एलन मस्क, ही इज हैविंग सम बैरियर इनसाइड इंडिया, व्हाट कुड बी द रीजन, इज इट नॉट द एडवांटेजेस फॉर अस? Number two, what is the output of the semiconductor which we are going to get from India? Recently, we started manufacturing. Thank you, sir.
2: All right. Your first question, Mr. Sethupathi, is regarding Starlink barrier. There are two issues which the Honorable Minister of Telecom revealed. One is, of course, the revenue sharing arrangement of those Starlink is being worked out, because this is a different kind of service. Three licenses have already been given.
3: Yes.
2: One web, Reliance Jio, and of course, Starlink Airtel was the third one. And there's the Amazon Kipiro, which is in the process right now. So one is revenue sharing. Second, satellite phone is something where security becomes an issue. So security compliances have to be looked at. When 2611 happened, there was a satellite call made,
3: yes,
2: which could not be traced. So we cannot allow a service which we cannot trace. Anything can happen in a large country like us. So I think that is one reason. Second, your second question is semicon output. You see, the output right now is not being disclosed by the companies. By the end of the year, we might have the first one coming out with something. But all I know is that about 6 of them are in the pipeline. And India is likely to become a dominating power in semicon. We just need to wait for some time for the statistics, Mr. Sethupathi.
3: Prachi. सवाल जाना हम जानना चाह रहे थे, जैसे प्राची वॉज ऑल्सो आस्किंग सेइंग शरद जी दैट द ऑयल प्राइसेस, वी जस्ट प्राची रेड दैट नाउ देयर इज अ डील बिटवीन द यूएस एंड रशिया फॉर द डीजल सप्लाई ऑफ डीजल, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट, ऑल्दो इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ द क्रूड दैट द डील इज अबाउट?
2: बहुत ही एक हिंदी में शब्द होता है, अनुभव विडंबना, तो बहुत ही उसको इंग्लिश में डाइकॉटमी भी कहते हैं, क्योंकि लिंडसे ग्राहम बिल जो पेश किया गया भारत के खिलाफ और चार देशों के खिलाफ लगाने के लिए, और उसमें तो इसीलिए था क्योंकि भारत वहां से क्यों तेल लेता है, तो आज जब जरूरत पड़ी तो देखिए अमेरिका को भी जब कीमतें बढ़ने लगी तो अपने लिए सोचना पड़ा और करना पड़ा, तो दुनिया तो हैरान है उनके इस निर्णय से कि जब अपने, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह है वहां पर तो वोटर्स नाराज भी हो सकते हैं महंगी तेल की कीमत की वजह से, तो देखिए जब जरूरत पड़ती है तो मैं आगे बोलना नहीं चाहता, पर कुल मिला के बात देखें तो दुनिया के लिए अच्छा है, दुश्मनी तो अच्छी नहीं है, इस प्रकार की खटास कड़वाहट आपस में जितनी जल्दी निकले अच्छी बात।
3: Time is a teacher.
2: Yeah.
3: Let's move on. The government is likely to announce a policy on stockpiling of critical minerals within a month, a move which is expected to ensure the supply of these resources to strategic sectors like defense, aerospace and energy, according to Secretary of Mines Keshav Chandra. He said that the government is also working on 4 dedicated critical minerals processing parks across Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh and Odisha to fast track value addition for key battery materials.
0: 2 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 13 अरब अमरीकी डॉलर से घटकर 734.6 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा यानी विदेशी मुद्रा पूंजी लगभग 10.5 अरब अमरीकी डॉलर से लुढ़ककर 604.7 अरब अमरीकी डॉलर रह गया है। सोने का भंडार 2.2 अरब अमरीकी डॉलर से कम होकर 106.4 अरब अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारत की रिजर्व स्थिति 15 मिलियन से फिसलकर 4.7 अरब अमरीकी डॉलर रह गई है। वहीं विशेष आहरण अधिकार 15 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर लगभग 18.6 अरब अमरीकी डॉलर के स्तर पर दर्ज है। और इसी बीच दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए, मगर संक्षेप में क्योंकि समय की बाध्यता है।
4: जी धन्यवाद कॉलेज, नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे एक हमारा सेविंग अकाउंट है उसमें अगर एफडी मैच्योर होने के बाद अगर जो पेमेंट है ज्यादा होती है तो ये बैंक में, अगर बैंक अपने ही बैंक में 5 लाख के ऊपर कोई एक फॉर्म भरा जाता है, ये क्या नियम है इसके ऊपर? क्योंकि अभी लास्ट टाइम हमसे एक फॉर्म भरवाया गया था जो ट्रांसफर हुई थी पेमेंट, तो हमारी परमिशन फॉर्म होता है, ये क्या चीज का होता है?
2: अच्छा, ये
4: पेमेंट हम ले जा सकते?
2: देखिये केशव जी, जो लार्ज पेमेंट्स होती है उसको जब ट्रांसफर किया जाता है तो अब नए

0: कानूनों के अंतर्गत वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, और उसकी उसकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए जो बड़ी पेमेंट्स होती है 5 लाख से ऊपर, उस पर जनरली बैंक से एक कॉन्फर्मेशन लेते हैं। आजकल तो आप चेक भी बड़ा इशू करें तो आपको बैंक से पहले उसको उसको प्री ऑथराइज करना पड़ता है, वरना वो चेक क्लियर नहीं होता। तो लार्ज पेमेंट्स पे आगे फ्रॉड को रोकने के लिए और उसकी ट्रैकिंग के लिए केशव जी ये प्रावधान किया गया है, आपको एक फॉर्म साइन करना पड़ता है। मुझे लगता है इसमें अल्टी थोड़ा सा हैसल तो होता है, पर कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए।
1: आगे बढ़ते हैं। नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट प्रारूप इस महीने की 15 तारीख से लागू होगा। नए प्रारूप के अंतर्गत 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लेन देन पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पर यूपीआई से फ्यूल खरीदने पर एमडीआर कैसे काम करता है, तो मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के अनुसार पेट्रोल पंप पर यूपीआई से फ्यूल खरीदने पर 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट के लिए 5 रुपए की फ्लैट रियायती दर लागू होती है। 5 रुपए की फ्लैट फीस पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को टैंक रिफिल करवाने पर ज्यादा लगने वाली प्रोसेसिंग फीस से बचाती है। 2000 रुपए से कम के सभी फ्यूल भुगतान पर शून्य एमडीआर रहता है।
2: Let's move on. The Reserve Bank of India, RBI, has said that the banks will need to maintain 99% of the required cash reserve ratio, CRR, daily, starting from October 16th, up from 90% at present. The move follows a review of the current liquidity condition in the banking system and will help reduce the banking system liquidity, which stood at a surplus of around 3.88 lakh crore rupees as of October 8th. A very, very quick comment from you.
0: I think as far as the next week's market is concerned, I think if we quickly comment on that, I think the market will wait for what is going to happen on the bond yields. If this again start rising, and the developments in West Asia, of course, will be paramount.
1: Right. Sharad ji, karyakram mein bhag lene ke liye aapka bahut bahut dhanyawad.
0: Dhanyawad, thank you so much.
2: And before we close, a reminder of the headlines. Indian stock markets snap their 8-week losing streak. Sensex and Nifty gains around 0.5%. Wall Street wraps up week with notable gains, and global crude oil prices rise during the week. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow, and do remember, listeners, that tomorrow is the day when we will be taking calls from you on any queries that you may have on mutual funds. So do call us then. Till then, from the entire team, goodbye.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
5: நேரம் 11:40. ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி நிலையம்.

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அசுதோஷ் மிஸ்ர். प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। इस योजना के तहत जिलों की विशेष कृषि आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ ही राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर चालक रहित परिचालन को बढ़ावा देने के लिए तैयार उन्नत सिग्नल प्रणाली के साथ 3.7 किलोमीटर की डबल डेकर वाली संरचना है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री समुद्री अवसंरचना को सशक्त बनाने, कार्गो निपटान क्षमता को विस्तारित करने और लॉजिस्टिक दक्षता को दुरुस्त करने के लिए तमिलनाडु में बंदरगाह से संबंधी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे।

0: दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तफ्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हॉल में घुस गए और नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से नई दिल्ली की ओर जाने वाली शंकर रोड, वंदे मातरम, टी पॉइंट, गोल चक्कर, झंडेवाला, पचकुइया मार्ग, गोल डाक खाना, पटेल चौक, मंडी हाउस, भैरो रिंग रोड, टी पॉइंट और लोधी रोड फ्लाईओवर सहित विभिन्न रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिबके की दादी के निधन और उनके अंतिम संस्कार के समय की जानकारी तुरंत उनके साथ साझा की गई थी। मानवीय आधार पर दिबके को उनके गृह नगर जाने के लिए हर संभव सहायता और सुविधा की पेशकश भी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। इस योजना के तहत जिलों की विशेष कृषि आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ ही राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों के साथ एक विशिष्ट 3.7 किलोमीटर लंबी डबल डेकर संरचना है जो चालक रहित संचालन के लिए की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए गए पलानी वेल्लोर छावनी अंबा समुद्रम परमकुडी और नमक्कल स्थित 5 अमृत स्टेशनों सहित 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के

हॉल में घुस गए और नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से नई दिल्ली की ओर जाने वाली शंकर रोड, वंदे मातरम, टी पॉइंट, गोल चक्कर, झंडेवाला, पचकुइया मार्ग, गोल टाक खाना, पटेल चौक, मंडी हाउस, भैरो रोड, रिंग रोड, टी पॉइंट और लोधी रोड फ्लाईओवर सहित विभिन्न रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी के निधन और उनके अंतिम संस्कार के समय की जानकारी तुरंत उनके साथ साझा की गई थी। मानवीय आधार पर दिपके को और उनके गृह नगर जाने के लिए हर संभव सहायता और सुविधा की पेशकश भी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நிறைவு பெற்றது நினைவில் நின்றவை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஆஷுதோஷ் மிஸ்ர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में भी यात्रा करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों के साथ 3.7 किलोमीटर लंबी डबल डेकर चालक रहित संचालन वाली संरचना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए गए पलानी वेल्लोर छावनी अम्बासमुद्रम परमगुडी और नमक्कल स्थित 5 अमृत स्टेशनों सहित 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। इस योजना के तहत जिलों की विशेष कृषि आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ ही राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
2: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की दिल्ली में आज की घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य स्थानों पर हो रहे बड़े पैमानों के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। मिशन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार की गारंटी संविधान प्रदत्त है और मजबूत

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों के साथ 3.7 किलोमीटर लंबी डबल डेकर चालक रहित संचालन वाली संरचना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए गए पलानी वेल्लोर छावनी अम्बा समुद्रम परमकुडी और नमक्कल स्थित 5 अमृत स्टेशनों सहित 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंडेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की दिल्ली में आज की घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य स्थानों पर हो रहे बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। मिशन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार की गारंटी संविधान प्रदत्त है और मजबूत संस्थाओं स्वतंत्र न्यायपालिका तथा स्वतंत्र मीडिया द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने CJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष

मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और नारे लगाए। उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपनी सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बाद 9 और 10 अक्टूबर को कई ट्रेनों को रद्द और कई के समय में बदलाव किया गया था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को ऐसे नए राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के किसी समझौते पर बातचीत करने में सक्षम हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की को रूसी तेल रिफाइनरियों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली तेल शोधन संयंत्रों को निशाना बनाने के विरुद्ध भी चेतावनी दी। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम यह मैच 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। चेन्नई पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल को रवाना करेंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में भी यात्रा करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर

0: ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री पोरूर बाईपास स्टेशन से पुनमल्ली बाईपास स्टेशन तक मेट्रो में यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बा समुद्रम, परमकुड़ी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारें की योजनाएं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की दिल्ली में हुई घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य स्थानों पर हो रहे बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। फिटनेस, युवा सशक्तिकरण और नशा मुक्त भारत के संदेश को सुदृढ़ करते हुए 94वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आज वाराणसी में सुबह 6 बजे से नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर केंद्रित इस पहल में युवा, आम लोग और खेल जगत की हस्तियां शामिल होंगी। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय साइकिलिंग महासंघ, राहगीरी फाउंडेशन और माई भारत के सहयोग से किया जा रहा है। उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। रेलवे ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया था। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। और खेलों में भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate projects worth 13,000 crore rupees in Chennai, Tamil Nadu today. Prime Minister will flag off the metro rail service of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. Mr. Modi will also undertake a ride on the Chennai Metro from Porur Bypass Station to Punamalli Bypass Station and back. The Punamalli-Porur corridor features a unique 3.7-kilometer double-decker structure.